0: लोकेशंस इंप्रूव करो, तिसराश की आला
1: ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ
0: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਾਜ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੋਨ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ 15-20% ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
1: ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਇਸਮੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸਲੀ ਲੱਗਤੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਤੋ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ ਕਾਮ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਸ ਸੇ ਬੜੀਆ ਲੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਜਿਸ ਮੇ 0% ਮਤਲਬ ਵਿਆਜ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਈਕ 2.5% ਵਿਆਜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਆਪ ਹਮੇ ਅਭੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ 437-264-3175
0: ਸਰਾਸ਼ ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਰਾਸ਼ ਦਾ 437-264-3175 ਸਰਾਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂਡ 2.5 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਲਾਈਕ 2.5% ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਾ ਵਿਆਜ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਝੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂ गवर्नमेंट बैंक को पैसा देती है 2.5% पे बैंक आपको वही पैसा देता है 10% पे 8% पे राइट यहाँ पे बैंक बीच में है ही नहीं जब बिचौलिया नहीं है तो गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट आपके खाते में देती है 50,000 से $1,17,000 का गारंटी फ्री 0% पे लोन है कहीं भी इस पैसे को यूज करें और अदर हैंड आप स्किल डेवलप कर रहे हैं आसान से कोर्स कर रहे हैं घर के कम्फर्ट से डिप्लोमा भी आ गया एंड ऑनलाइन कोर्सेज है एग्जाम्स नहीं है ईजी फोन पे लैपटॉप पर फंडिंग भी आ गई
0: अच्छा सो अगर कोई नायग्रा फॉल च रहिंदा ऑशवा च रहिंदा दूर ने वो सारे कोर्सेज ऑनलाइन कर सकते हैं
1: बिल्कुल जी हमारे बड़े क्लाइंट्स हैं जो नायग्रा में है हैमिल्टन से हैं एंड स्किल डेवलप कर रहे हैं फंडिंग हासिल कब से कर चुके हैं
0: ओके वेरी गुड सो कोर्सेज जेडे ने सोखे ने पासिंग रेट की है
1: हाँ जी हाँ कोर्सेज हम डील ही सोखे में करते हैं अगर कोई कहता है कि हमें स्पेसिफिक ये कोर्स करना हम कह देते हैं हैंड्स अप कहीं और से कर लीजिए हमें गाली नहीं खानी तो इसलिए साफ काम कर रहे हैं आसान कोर्सेज हैं और आप फंडिंग हासिल करते हैं कोई एज लिमिट नहीं है पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन हो कहीं भी ओंटारियो में रहते हो अभी कॉल करो ऑफिस आओ असेसमेंट कराओ अभी कॉल करके असेसमेंट हम आपकी फोन पे ही कर देंगे बाकी हमारे ऑफिस आइए एनरोल कराइए
0: सर मेजोरिटी जो लोग ने फैमिली ऑफ फोर ही होंगी है दो पेरेंट्स ने दो बच्चे ने इन्हें कितने पैसे मिल सकते हैं
1: हाँ जी वैसे पंजाबीज में तो वैसे हम में तो लाइक फैमिली ऑफ 4 ही है बट मेरे पास बड़ी कम्युनिटीज है उनमें फैमिली ऑफ 8 भी है 7 भी है बट यस कुछ बढ़िया आपका फैमिली ऑफ 4 का हाँ जी 1.5 लाख बन जाता है जी इनको और उसमें कहीं भी खर्च कर सकते हैं इस पैसे को किस्ते 2.5 साल बाद स्टार्ट है और लाइक अगर आप रिफाइनेंसिंग या क्रेडिट इन सब चक्रों में ना पड़े उसमें आप बस छीले ही जाओगे कोई छील ही देगा आपको उन चक्रों में एक लोन के चक्कर में और उधारी शुरू हो जाएगी हमारे पास आइए स्किल डेवलप करें फंडिंग गवर्नमेंट से हासिल करें हमारी फीस काम होने के बाद $199 है एयर पे बताते क्योंकि कुछ झोल नहीं है नंबर नोट करें ऑफिस आए कॉल करें अभी 437-264-3175 437-264-3175 कॉल करो एस्टीमेट लो 437-264-3175
0: 437-264-3175 सराश ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰਾਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਫੀਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਹੈ
1: ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਿਸੇ ਕਹਾ ਸਾਫ ਕੰਮ ਹੈ ਤੋ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕਲੀਅਰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ ਏਅਰ ਪੇ ਠਾਗਰ ਕੀ ਫੀਸ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਜਾਣਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਵੋ ਜਬ ਫੀਸ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਤੋ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਆ ਜਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ इसलिए कोई चलाकी नहीं है हमारी फीस काम होने के बाद $200 है काम होने के बाद आज आई थिंक आज मुझे अराउंड 15-20 इंटरैक आए हैं $200 के तो इसलिए आज मतलब इतने अप्रूवल्स कल परसों आए होंगे हमारे तो इसलिए पीछे ना रहिए कॉल करें असेसमेंट कराएं 50,000 से $1,17,000 का लोन हासिल करें 437-264-3175 नो मीठी बातें नो कमीशन नो एंड देयर इज नो कैच
0: क्या बात है सो नंबर है सराज दा 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 सराज बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी गुड प्रोग्राम पंजाबी दा तुसीं सुन रहे हो ते लाइए फिर गाना एक वधिया जिहा थोड़े लई बदलां दे काल जिहे अग लग जूनी जदों ਸੌਣ ਦੀ

स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज करे भी नहीं करना चाहिदा। इसे ले तो हाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा। बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते। एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन। ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह, जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कनाडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, इस सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जांदे हन। हुणे कॉल करो 905-399-6110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी दे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते, जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स। लघु शॉपिंग का मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन, या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com।

0: चटनी पीसते हैं, उसके डंडे भी है
1: जी,
0: तो उसको दरअसल मुसल बोलते हैं, एक लफ्ज है उर्दू में मुसल,
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
0: तो वो उसमें जो कुंडी में डाल के वो करते ना, ओखली बोलते हैं उसको।
1: साडे खलील जी, साडे पंजाब जो बोलते हैं कोटना,
0: कोटना, हाँ।
1: कुंडा,
0: तो वो मैं आज भी, हाँ, तो आज भी मैं वो इंडिया से लेकर आया था। मैं यहाँ पे उसमें दो चीजें बनाता हूँ, एक लहसुन और मिर्ची की चटनी,
1: हाँ हाँ,
0: और एक बनाता हूँ, एक बनाता हूँ, एक माजून होता है जिससे जिसम में बहुत गैर मामूली ताकत होती, ऐसी ताकत बंदे में।
1: तो वो लहसुन दी ते मिर्ची दी चटनी कह के ना मुंह च पानी ले आता मेरे, तंदूर दी गर्म गर्मा गर्म तंदूर दी रोटी होए, उत्ते मक्खन रखे होए ते उत्ते चटनी रखी होए, किसी चीज दी जरूरत नहीं है, एदा मुकाबला कोई डिश नहीं करदी।
0: नहीं नहीं बिल्कुल चंगी, सही है बात है आपकी, मेरे को हंसी इस बात पे है, जब आप बोले ना मुंह बीच पानी आ गया,
1: बिल्कुल,
0: तो मैं बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ ऐसे लफ्जों को, क्योंकि अभी आजकल आम नहीं है, इसको बोलते आम लफ्ज नहीं है, जबा सद आम, यानी कि पब्लिकली नहीं बताए जाते ना, अब सुने जाते, क्योंकि है ही नहीं,
1: वो टेस्ट नहीं है ना। मतलब आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे गांव में क्या होता था, हम छोटे छोटे जब होते थे, जब गांव में जिस जब हाड़ी काटी जाती है ना, जो कणक की फसल काटी जाती है, तो 15-15, 20-20, 25-25 लोग ना डेली वेजेस पे उनको लेकर कटवाई जाती है फसल, तो उस वक्त घर में उनको रोटी भेजनी होती है, खाना घर में बना के, तो तंदूर पे रोटियां लगा के 40-50-60, साथ में सब्जी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कूंडे में रगड़ी हुई चटनी, मिर्ची की चटनी ही होती है, वही साथ में लस्सी होती, बस और कोई
0: डिश नहीं होती। क्या ताकत होंगी उसके अंदर, क्या ताकत होंगी, सोचिए आप और फिर काम के बाद।
1: बिल्कुल
0: बहरहाल ये चीजें हैं, और हमाम दस्ते पे भी बनाई हुई चीजें जो होती
1: है,
0: जो पत्थर वो भी बड़ा खास होता है। मेरे पास दोनों किस्म का, एक पीतल का भी है और एक उसका पत्थर का भी है, मैं खास तौर से लाया। तो इतना वजन था, यहाँ कस्टम पे मुझसे पूछा ऑफिसर, ये क्या चीज है इस बैग में, दो बंदे उठाए इसको, मैं बोला भाई मैं ये लाया हूँ, तो बोले अजीब शौक है आपका, हमेशा यहाँ तो किताबें लाते आप वहां से इंडिया से, या फिर ये लाते, बोला ऐसा नहीं है, मैं हर जगह से जहाँ पे भी नायाब चीज होती वहां से वो चीज लेकर आता हूँ, ताकि लोगों, मेरे बच्चों को, उनको बताऊं कि ये क्या चीज है और इसके फायदे क्या है। तो ये कितने भी मिक्सचर बनाओ, ये आजकल बच्चियां जो आजकल बटनों के ऊपर जूस बना रहे हैं, वो ये कुछ भी नहीं है इसके सामने, बता रहा हूँ, इसमें जो ताकत आती है ना, और पहले जो औरतें जो जिस्म उनका ताकत और तंदुरुस्त रहता था, ये कुंडे की चटनी में पीस के अगर एक किसी को तमाचा मारे तो 6 गुलाटियां खाता था उन्हें।
1: चलो भाई खलील जी, ये आपसे पक्का रह गया, किसी दिन आपसे ना कुंडे की चटनी जो मिर्ची और लहसुन की और तंदूर की रोटी के साथ जरूर खाएंगे किसी दिन आपके साथ।
0: जरूर जरूर, मैं आपको जो शामी कबाब बस बनाता हूँ मेरे हाथ के, खाएंगे तो आप 2 गुलाटियां मारेंगे ऑफिस में, बोलेंगे ये क्या चीज है यार, ऐसे लाजमत तो मैं देखा नहीं थी कभी बोल के। और मैं बहुत पकवान का शौकीन आदमी, याद रखिए, बहुत जबरदस्त पकाता हूँ, मेरा शौक है। थैंक यू जनाब।
1: तो गल्लां बातां हो रही दोस्तों, अज पुरानियां बड़ियां खूबसूरत, कोटना, कुंडा, चटनी, तुसी अपनी कोई याद सांझी कर सकते हो। मैनू ना कोटना शब्द आया ना, तो मैनू एक कहानी याद आ गई, साडे एक बहुत कमाल दा एक राइटर है, मोहन भंडारी उसका नाम है, उन्हें एक कहानी लिखी, कहानी का नाम ही कोटना, और वो कहानी दे विच एडी खूबसूरत उन्हें गल की, वह कहिंदे वी पिंड दे विच एक तरखान सी जिहड़ा लोकां दे लकड़ी दे काम करदा सी, ते नाल उह कोटने बनाउंदा हुंदा सी, ऐ जिहड़े कुंडियां दे विच चटनियां रगड़न वास्ते कोटने इस्तेमाल हुंदे ना, उह बनाउंदा हुंदा सी, बड़ा कारीगर सी उस चीज़ दे विच। कोटने बनाउंदा बनाउंदा उहदा मुंडा पढ़ लिख गया, वड्डा अफसर बन गया, ते बहुत वड्डे शहर दे विच ना बहुत वड्डा ऑफिसर लग गया, उहनूं कोठी मिल गई, उत्थे कार मिल गई, रहन सहन वास्ते नौकर चाकर मिल गए, ते बापू नूं कहिंदा वी बापू तूं हुण मेरे कोल ना शहर आ जा, ते छड्ड दिओ कम जिहड़ा करना, जिहड़ा पिंड च करदा कोटने कूटने बनाउण वाला। ते बापू चलो मुंडे दे कहे ते जाणा ही सी, उह दोनों भाई उत्थे चले गए, उत्थे चले गए ते उत्थे जदों रहे ना, ते उन्हां दा दिल ना लगे, जिवें अक्सर इत्थे साडे बुजुर्ग आ जांदे बच्चियां दे कोल, इत्थे आ के दिल नहीं लगदा, उह वी अपने बच्चे दे कोल अगे दिल ना लगे उन्हां दा, बड़े अफसोस ढिले ढिले रहन लग पे, हौली हौली उह बीमार ठमार रहन लग पिया, उन्हें बड़े डॉक्टरां नूं दिखाया, बड़े इधर उधर दिखाया, लेकिन उह ठीक ना होवे। एक दिन की देखिया वी मुंडा रात नूं अपने बैडरूम च सुत्ता पिया, ते उहनूं बाहर ना दलान दे विच आवाज आवे, ठक ठक ठक ठक दी आवाज आई जावे, ते बच्चे ने, मैं तुहानूं ब्रीफ दे विच दस्सिया, बच्चा जदों

पूर्ण सतगुरु ज्ञान रहाओ। जित घट बसै पार ब्रह्म सोई सुहावा था, जम कंकर नेर ना आवई रसना हर गुण गा। सेवा सुरत न जानिया ना जापै आराध।

गुरु नारायण दयो गुरु गुरु सच्चा सिरजनहार गुरु तुठे सब किछ पाया जन नानक सत बलिहार गौड़ी महला पंजवा सूके हरे किए खिन माहे अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवा को दीनी अपनी सेव रहा मिट गई चिंतपुनी मन आसा करी दया सतगुर गुण दासा दुख ना थे सुख आए समाए तील ना परी जा गुर फरमाए किछ पुनी पूरे गुर मिले नानक ते जन सो फल फले गौड़ी महला पंजवा ताप गए पाई प्रभ सांत शीतल भय कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते भय सुहेले जन्म जन्म के पिछड़े मेले रहा सिमरत सिमरत प्रभ का नाम सगल रोग का विनस्या था सहज सुभाए बोले हर बाणी आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा जिस सिमरत दुख सब जाए नाम रतन बसे मन आए जप मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन बखानी रहा एक बिन नाही दूजा कोई जाकी दृष्ट सदा सुख होए साजन मीत सखा करेक हर हर अखर मन महलेक रव रहे सर्वत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिट्टी खुद दास नहा सर्व कल्याण सुख सहज निधान जाके हृदय बसे भगवान औखद मंत्र तंत्र सब छार करना हार हृदय महतार ताज सब परम भजो पार ब्रह्म कहो नानक अटल हो धर्म गौड़ी महला पंजवा सांत पाई गुरु गोविंद पाई ताप पाप बिन से मेरे पाई रहा राम नाम।

शीतला ते रखिया बिहारी, पात हम तब कृपा धारी, नानक नाम जपै तू जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा, फिरकर पैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे का सवारे रहाओ, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करता रे, बात साह साह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भव होए पलभु भगवान।

ताव है आयो शरण तुहारे। कर कर हार्यो अनेक पाव पाती छोटे कत हू नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मित जाही। कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया। संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का सब कमाया। जीत लय ओए महाबिखानी सहज सोहेली बाणी। कहो नानक मन पया परगासा।

करना प्रगटे भले संजोगा प्रभु पानी सब सुभाखिया गाव हो सुन हो पढ़ो नित पाई गुरपुरा पूरा क्या रहाओ साचा साहेब अमित बढ़ाई भगत बछल दयाला।

कर मैं सूख बाहर पुर सूखा प्रभ अपने भय दयाला नानक बिघन न लागे को मेरा प्रभु आ कृपाला सोर पहला बनवा गए कले रोग सबना से प्रभ अपना कृपा धारी आठ पहर आराधो स्वामी पूरण काल हमारी हर जियो तू सुख संपत राज राख ले हो पाई मेरे को प्रभ आ गए अरदास राव जो मांगो सोई सोई पाओ अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरु पूरा बेटियो मिटियो सगले अंदेसा सूरत महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता

0: to the Garden Fire Radio. Good for your body, mind, and soul.
1: आए आपका स्वागत है हर संसार में अपनी आत्मा परमात्मा अकेले दुनिया और बाहर की दुनिया
2: आपको अपने आप चेक करवानी है आई एग्जाम आई ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंसेज सन ग्लासेस सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जैकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए आपको करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5333 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
3: ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ

0: बाखा सब हर करे सब काम सफल हनुमान।
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं अमेरिका में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, जय कार लगवानी है, ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट, ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहाँ पे, कहाँ पे, योगी ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगी ऑटो सेंटर के हैरी को, हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4 905-547-6464। योगी ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगी ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
0: अच्छा, सप्त श्लोकी शिव उवाच, देवी त्वं भक्त सुलभे।

ज्ञातिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा सम्पूर्णा।

मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए मौसम बहुत ही बढ़िया है, वीकेंड है। अभी लॉन्ग वीकेंड तो नहीं है, लेकिन वीकेंड तो जरूर है। अब आपके लिए अगला वीकेंड मेरे ख्याल थैंक्सगिविंग का ही आने वाला है। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, बढ़िया क्वालिटी का आपको टीवी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए, किचन की गैजेट चाहिए लेटेस्ट डिजाइन वाली, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। तो अब आपको अगर बढ़िया सोफा चाहिए, आउटडोर बारबेक्यू चाहिए, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको मिलती है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन वॉल्फ में है। और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा 905-799-0045-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो अगर आपने कहीं भी मूव करना है, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो 416-524-8004 पर आप आज ही कॉल करके अपना ट्रक बुक कर लीजिए। 416-524-6704 मुझे कारें भी आपकी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में मूव करवाने में मदद करती हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए मौजूद है। और आपके लिए, लंदन वालों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कलीजन डिपो गौर रोड पे आपके लिए खुल चुके हैं। तो आप और जानकारी के लिए मास्टर कलीजन डिपो .com पर जाइए। आपको किसी तरह का भी कलीजन का काम करवाना है तो मास्टर कलीजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिएगा। तो अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। तो आज गजल आपको सुनाते हैं, कोई अच्छी सी गजल आपके लिए। बहुत अच्छी अच्छी गजल्स हैं जो जी सिंह जी ने गाई हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी गजलें आपके लिए गाई हैं। तो आइए जरा रोमांटिक सा हो जाते हैं। और ये जो होठों से छू लो तुम, ये उन्होंने बहुत साल पहले कनाडा में रिचमंड हिल में बड़ा प्राइवेट सा शो हुआ था। तो वहाँ पे सभी लोग, हम लोग जमीन पे बैठे थे और जिगे सिंह जी हमारे साथ थे, तो उन्होंने ये गजल गाई और हम सभी ने उनके साथ ये गजल गाई। वो एक बड़ा प्यारा सा मोमेंट था कि स्वीट मेमोरी है। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, और दिमाग में वो सारे पिक्चर्स सामने आ जाएंगी जैसे जैसे ही आपके लिए ये गजल सुनेंगे आप, तो वैसे वैसे ही मुझे भी वो सारा कुछ याद आ जाएगा। असल में ये

जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की ये बड़ी प्यारी सी गजल है। उम्मीद रखता हूँ आपकी जरूर पसंद आ रही होगी, तो एंजॉय कीजिएगा आप भी इस गजल को। तो अगली गजल हम आपके लिए सुनाने वाले हैं पंकज उदास। जी हाँ, पंकज उदास की बहुत ही प्यारी सी गजल है।

करके आपका स्वागत है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये गजल पसंद आई होगी। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, छोटी सी किचनेट सेटअप करवाना चाहते हो, नई किचन गैजेट चाहिए, बढ़िया टीवी चाहिए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। बड़ी स्पेशल प्राइस और बढ़िया क्वालिटी, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे ब्रैमपुर में मौजूद है। और दूसरी लोकेशन टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की आपके लिए ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो और फिर अपने ऑर्डर बुक कर ले। आप उनको कॉल कर सकते हो 9045990045 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो कनाडा भर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं एचके मूवर्स। उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप अपना ट्रक बुक कर लीजिए मूविंग के लिए 416-524-6524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। जी हाँ, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को आप कॉल कीजिए और बढ़िया बढ़िया सामान अपने घर में लेकर के आइए। अभी क्रिसमस आने वाली है, थैंक्स गिविंग आने वाला है, तो आप अपने घर को खूबसूरत लुक दीजिएगा। बढ़िया क्वालिटी की आप सामान लेके आइए अपने घर में टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स से। और फिर मूविंग के लिए एच के मूवर को कॉल कीजिए तो 416-524-6704 बहुत बढ़िया आपके लिए मूविंग करके देते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल करिएगा। तो ये है आपके लिए एच के मूवर्स। अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारी सी गजल है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, गुलाम अली साहब की। तो वेरी रोमांटिक वन, लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल गजल।

जिस रास्ते से तुम गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूटे गोरी तू वो हीरा बन जाए।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आप भी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो खूब एंजॉय कर रही हूँ, तो हम एंजॉय कर बता दे, रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे, तो इसी तरह का मनोरंजन करेंगे। आज गजलों का ही पूरा प्रोग्राम होगा, तो बहुत बढ़िया बढ़िया गजलें आपके लिए पेश करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही प्यारी सी गजल है, लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल अलका याग्निक जख्म फिल्म से।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद रख रही हूँ कि आपको जरूर प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर से सारा और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अगर आप किचन और वाटर वर्क्स में घर खरीदना बेचना चाहते हो तो आप नसीब फिल्ड को कॉल कीजिए 519-546-1260 519-546-1260। तो एक और बहुत ही प्यारी सी गजल, हीर, ये एक्चुअली हीर गाई है, बहुत ही प्यारी हीर गाई है।

0: गाने तुझे कोई देखा चुप है के खुलादा
1: एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। जैसे मैंने कहा कि अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा देती हूँ। नानक राम चड्डी कला तेरे पाने स्वादा पला, हैव ए वंडरफुल डे एंड अ सेफ वन। एंड रात को 10 से 11 बजे फिर आप, तब तक नानक राम चड्डी कला तेरे पाने स्वादा पला।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: सतगुरु जी की फतह तलासरी महला तीजा लावा की कीमत मित कहीं न जाए से जानता न जैन एक नाम लेव लाए गुरमत साची साचा विचार आपे वख से दे विचार।
1: बारह सितंबर 2026 जी बहुत ही प्यारा दिन ते बहुत ही पवित्र दिन क्योंकि आज जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश पुरब दिया जो कड़िया ने सो यह जो पवित्र दिन है जी लख लख वधाइयां अज ते इस दिन दियां होण। सो सन 1604 ईस्वी विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने पहले चार गुरु साहिबाना भगतां ते अपनी बाणी एक ग्रंथ विच दर्ज करवाई जिसनूं आदि ग्रंथ दा नां दित्ता ते आदि ग्रंथ दे लिखारी भाई गुरदास जी सन। सो आदि ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश बाबा बुढ़ा साहब जी ने हरिमंदर साहब विखे कराया ते उस वेले जो हुक्मनामा ये आया सी संतां के कारज आप खलोया हर कम करावण आया राम। सो परमात्मा करे जी जो हर घर दे विच खुशियां होण हर जीवन दे विच नाम बाणी ते खुशियां दा प्रकाश होवे। सो बहुत बहुत जी वधाइयां सो पहले प्रकाश दिहाड़े दियां। सो परमात्मा हर घर दे विच जो है जिवें हुण सूरज दे नाल चानण हौली हौली जी होणा ते चलो इस दे विच थोड़ी जी हुण तब्दीली आई है थोड़ा देर नाल हुंदा पर जो चानण जो सवेर वेले हुंदा ये जो प्रकाश हुंदा सो इस सारिया दे मना दे विच होवे सारिया दे जीवन दे विच होवे। सो सवेरे सवेरे जी परमात्मा अगे यो अरदास असी जरूर करिए जी। सो 12 डिग्री दा जी तापमान इस वेले दा है ठंडा मौसम है पर दिन भर अज मौसम दे हाल जी हमेशा दी तरह ही होणगे। सो सितंबर दा जो 12वां दिन है पर चलो शुक्र है कि जो मौसम है अले कह सकते हैं कि चंगे वाले पासे ही है। सो इन्नी दिने जैकेट की हजे कोई लोड़ नहीं है जिथे 26 डिग्री का तापमान अज दिने होना धुप तिखी होनी है जी बदलवाई भी होनी है ते जी मीह दे संकेत अज घट ही ने। सो अज साफ मौसम रहेगा ते 6:54 ते जी 7 दे ही करीब कह लो कि अज दा जो सनराइज होना है सूरज ने अपनी हाजरी भरनी है ते फिर यह जो प्यारा दिन है असी शामी 7:34 ते सूरज ढलन दे नाल जी संपूर्ण करांगे। सो उम्मीद करदे हां जी थोड़ा यह जो अज दा दिन है बहुत बहुत सफल रहेगा जो जी असी मन दे विच सोचिया है जो ठाणिया है जिस चीज़ की उड़ीक है जिस खबर की उड़ीक है ते उना सारिया चीज़ां ते परमात्मा जो है उबूर जरूर पावे। सो जी 12 सितंबर 2026 बहुत बहुत सारिया नूं मुबारक होवे। सो इस दे नाल ही जी मैं थोड़ी जानकारी थानू यह भी जरूर दे देवां कि कल दा दिन 13 सितंबर 2026 तुसी याद रखो जी महान नगर कीर्तन। सो ए नगर कीर्तन जो है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिवस नूं ही समर्पित है। सो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माल्टन विखे यह नगर कीर्तन जो है वह शुरू होना है। सो तुसी अपने परिवारां समेत आके हाजरी जरूर भरनी गुरु साहब दे घर दियां जो खुशियां है इन्हां दी प्राप्ति तुसी जरूर करो ते नाल ही संकेत इस गल दा भी दे दिए कि अमृत संचार यह जी तय है 20 सितंबर नूं दिन एतवार अगले एतवार दुपहरे 2 तो। सो तुसी इस बारे जी पूरी जानकारी जो है जो कमेटी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माल्टन विखे है उन्हां पासों तुसी जरूर जी इस बारे जानकारी भी लै सकते हो जी। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ।

वापस आनी आ। 2327 तक ये जो जरूर असी लागू कर देना, तो अपने जो TTC फेयर ने ये भी इन्होंने प्रोमिस किया कि 2027 तक असी फ्रीज भी करके रखने। सो इन्हां ने अपना यह पहला कह लो कि वड्डा कैंपेन अनाउंसमेंट जो है वह हाल दे विच ही कीता, पिछले हफ्ते शुक्रवार दे दिन ही कीता, कल दे दिन ही कीता कह लो कि इस तरह थोड़ी सेविंग जो है असी जरूर करवावांगे, तां जो कि तुसी 1 साल दे विच घटो घट $1,000 तां अपने कम्यूट दा जो है इस दे नाल जरूर सेव कर सकोगे। सो TTC जो अपना बजट प्रोसेस जेकर देसी देखिए पिछले साल दा, ते $232 मिलियन दा डेफिसिट जो है वो फेस कर रहा है। सो लोड़ पई कि घट्टो घट $35 मिलियन जो है रिजर्व फंड तो विदड्रॉ करना पवे, तां जो कि फेयर्स नू असी फ्रीज कर सकी। इस कारण इन्हां ने ये डेफिसिट भी फीस जो फेस किया, ते फिर $35 मिलियन जो विदड्रॉ भी किते। सो हुण जो अनाउंसमेंट जो है जो ओलिविया चाओ ने किया, सो जो अगे हुण बजट तां पहले ही डेफिसिट दे विच है, फिर अगे ही पैसा जो है वो पहला कढ़वाना पै रहा है। सो फिर इस प्रॉमिस तो बाद अगे होर की बनेगा, सो चलो ये तो आने वाला समा ही दसेगा। ये हले कह सकते हैं कि कैंपेनिंग दे वादे ने, बाकी हुण देखते हैं कि आने वाले समय दे विच जो है वो एग्जैक्टली जो है वो की बनता है। सो वक्खो वक्खरे प्रोमिसिस जो ने, एड़ी चोटी दा जोर तां फिर कैंडिडेट्स जो ने वो ला ही रहे ने, ते फिर एक दूजे दे जो प्रपोजल्स जो ने उन्हां दी निंदा भी कर रहे ने। सो बैक टू बैक फिर ये स्टेटमेंट्स भी आ जांदियां ने, जिथे एक बंदे ने कुछ अनाउंस कीता ते फिर उस नू फिर दूसरा बंदा जरूर कोई ना कोई कमेंट जो है वो दे छड़दा। जिथे ओलिविया चाओ दे इन्हां फ्री राइड्स ते जो एक होर मेयर कैंडिडेट क्रिस अलेक्जेंडर ने, उन्होंने फिर अपनी स्टेटमेंट रिलीज कर दी कि फ्री राइड्स चलो इन्होंने अनाउंस कर दिता है, पर जो $140 मिलियन जो है जो पिछले साल का लॉस है, जो उस दा यह की रीज़न देंगे या उस दा अगे की करेंगे पहला यह तो दसन। सो जी ये तो बिल्कुल जी आने वाला समा ही दसेगा, ते तरीक जो अक्टूबर 26 जो है जो इलेक्शन सेट हुई है, फिर आने वाला समा जी इस दे विच बिल्कुल दसेगा। सो जी प्रोग्राम पंजाबी लहरा रेडियो थोड़े सफर दा साथी है, ते थानू असी याद जरूर करवा दिए जी, क्योंकि कई बारी हुंदा है कि याद ही करवाना पैंदा है, असी भुल जाने आ जदों असी रोज़ाना बिजी होईदा है, जदों असी रोज़ाना अपने कम्मा कारां दे विच लगीदा है। ते चलो अपने कम्मा कारां च लग के असी अगे दा पॉजिटिव ही सोचीदा है, पर एक पहलू जो है जो कदे भी आ सकदा है उस बारे भी सोचना तैयार बर तैयार रहना जरूर चाहीदा। सो इंश्योरेंस तुसी अपनी नहीं करवाई, तुसी सेल्फ इंप्लॉयड हो फिर तो थोड़े लिए बहुत जरूरी है क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होना भी, ते नाल लाइफ इंश्योरेंस, ते घरदियां दे लिए जो कि सुपर वीजा ते इत्थे आए ने, विजिटर वीजा ते इत्थे आए ने, उन्हां लई इंश्योरेंस। सो अच्छियां पॉलिसीज जी हरप्रीत सैनी जी पास ने, तुसी इन्हां नूं संपर्क करो, इन्हां तों पूरा वेरवा लो ते पूरी कंसल्टेशन करो। नंबर 416-817-6500, 416-817-6500 जी हरप्रीत सैनी नूं तुसी संपर्क कर सकते हो। ते इंश्योरेंस दे नाल नाल अच्छे हेल्थ डेंटल ते इन्वेस्टमेंट प्लान्स बारे भी तुसी हरप्रीत सैनी जी पासों पूरी जानकारी जी जरूर लो। नंबर है 416-817-6500, 416-817-6500 जी यह नंबर है, नोट तुसी जरूर करना, क्योंकि कई बारी सानू हुंदा है कि हले साड़ी इन्नी उम्र नहीं हुई कि असी इंश्योरेंस ले लिए, या फिर खर्चा वादू दा इंस्टॉलमेंट वादू दी जो है वो क्यों पौनी है, या फिर असी सेविंग तो आप ही कर ही रहे हैं, पर जदों एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़े नाल हुंदी है तो ये फिक्र जो है वो अगे दा वो हट जाता है। सो उस लई जी जरूरी है इंश्योरेंस लैनी, ते नाल ही बच्चियां दे एजुकेशन दे जो बहुत ही अच्छे प्लान्स ने,
ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫੀਸਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 416-8165-00 ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਟਰੱਕ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂਡੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਏਬਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਰੱਕ, ਕਾਰ, ਹੋਮ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਨੰਬਰ 647-929-95-09, 647-929-95-09 ਜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ 647-883-1898 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ, 647-883-1898 ਜੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਜੋ ਪੋਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂਡੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਗਾਜ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰਾ ਗੀਤ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ।

0: दोस्तों सत श्रीकाल नमस्कार
1: टोरंटो गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन रियल्टर रव सिंह सेलुलर पॉइंट्स ए टू जेड किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट द सेंस

मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंत ना कोई करने हारा करदा आपे जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग सारिआं नूं। मैं हाँ तुहाडे संतोष कौर ते तुहाडा सारिआं दा निघा जिहा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही शोर रेडियो आवाज़ ते तुहाडा ते साडा साथ बनिआ रहेगा ठीक एक बजे तक। तो तुसीं सुनदे रहो तुहाडा अपना प्यारा जिहा शोर रेडियो

0: संतोष जी क्या बात है, मुझे तो मतलब मैं पंजाब से नहीं हूँ बट ये गाना इतना बढ़िया है, मुझे भी डांस करने का मन कर रहा है
1: जी जी। और मैं उन्हें ऑफ एयर पंकज नु इहदा मतलब समझा रही थी कि सॉन्ग का मतलब की होंगे। पंकज कह रहा है कि बहुत ही वधिया सॉन्ग है। सो साडे नाल साडे नेक्स्ट कॉलर है गया जी 8396 ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋ।
2: ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। शुभानु जी बहुत जल्दी ऑन एयर आके आपका मैसेज भी देंगे। सो नंबर नोट कर लो तुसी 416-1600-206-3200। यू वेलकम जी। सो पंकज जी बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सुनते हाँ असी कि कौन कौन यह सॉन्ग तुसी सारे ने सुनिया है। जे नहीं भी सुनिया ता भी दसो, बट मेनू लगता है मोस्टली सारे सुनते ही।

0: ऑटो कोलिजन ये हमारे सबसे बेस्ट है स्पॉन्सर कहूंगी, क्योंकि
1: जी
0: ये
1: जी
0: हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एटलीस्ट 2 घंटे से बैठे हुए हैं और पेशेंट्स के साथ बैठे हुए हैं. सो स्पीडेक्स तो ऑटो कोलिजन सेंटर तो रमन जी एंड उन्हों की पूरी टीम हैगी है साढ़े नाल. सो पंकज जी ने बहुत वधिया गल कही. देखो जी
1: जी
0: गड्डियां च गड्डियां वज सकदियां है, साडा किसी का कंट्रोल नहीं है. कई बार पिछों दी आके कोई गड्डी मार जांदा है,
1: जी
0: तुसीं
1: जी
0: चाहे जिन्नी वधिया भी गड्डी चलांदे हो. सो टेंशन नहीं लैनी, तुसीं एक नंबर नोट करके रखो अपनी गड्डी दे. सो नंबर हैगा स्पीडेक्स ऑटो कोलिजन दा, नंबर नोट करो 416-277-9221, 416-277-9221. ते लोकेटेड है गया 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11. ते रमन जी तुहाडा स्वागत है शो ते.
2: हां जी संतोष जी, सत श्री अकाल सारे लिसनर, सत श्री अकाल पंकज जी, सत श्री
0: अकाल जी.
2: हां जी आपा है गया स्पीड एक्स ऑटो कोलिजन तो, ते अपना एड्रेस है गया 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट 11. फैमिली बिजनेस आ, कोई ऐदां दी किसी अपनी भैन ने माता ने किसी ने भी आना चाहो बेझिझक होके वह आ सकते हैं. तो जिथे कि अपने बच्चे तो साडा फैमिली बिजनेस करके बच्चे भी काम करते हैं
0: जी. सो बहुत वधिया इन्हां ने गल कही, फैमिली बिजनेस है, बच्चे भी काम करते हैं. साडे छोटे स्पॉन्सर कितने चले गए हुणे
2: बस,
0: सो उन्हां नूं असीं मिस कर रहे हैं और आए सी साडे नाल, बट उन्हां नूं कोई अर्जेंट कोई टीचर दी कॉल आई है किसी असाइनमेंट दे रिगार्डिंग, सो बाहर चले गए. सो स्पीडेक्स ऑटो कोलिजन वन ऑफ द बेस्ट कोलिजन सेंटर है गया, जो कि तुहानूं लाइफ टाइम वारंटी दिंदे आ सारियां रिपेयरस ते पेंट जॉब्स ते. कंप्लीट कोलिजन रिपेयरस करदे आ. सबसे इम्पोर्टेंट बात पंकज जी, आप मुझे
1: जी.
0: एक रिसेंट कोई केस बता रहे थे,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: गाड़ी कोई उठा के ले गया, फिर कितना
1: हाँ
0: बिल बनाता, वो थोड़ा सा बता दो जो आपके फ्रेंड थे.
1: जी जी, वो फ्रेंड हुआ क्या कि जैसे मतलब अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो गया
0: जी.
1: और जैसे ही आपको पता कि जब एक्सीडेंट होता है एम्बुलेंस पुलिस और टोइंग वाले आ जाते हैं, तो उन्होंने मतलब क्या कहते हैं वो माहौल इस तरह का बना लेते कि मतलब अभी इमरजेंसी ले जानी पड़ेगी, टोइंग करनी पड़ेगी, गाड़ी में बहुत सारा डैमेज है, वो बता देते. तो वैसे ही उनके साथ हुआ और वो टोइंग वाले उनकी गाड़ी टो करके जो अपना जिनके साथ उनका टाइप था वहां पे ले गए
0: जी.
1: और फिर वहां से उन्होंने मतलब इतना लंबा बिल बनाया संतोष जी, मतलब
0: जी.
1: मैं मतलब अगर मैं वैल्यू बता दूंगा तो मतलब लोग कहेंगे चलो यार मतलब कुछ और ही चल रहा है
0: जी.
1: ठीक है, तो उनका तो ये सब जस्ट टू कट द शॉर्ट द स्टोरी कि आपकी अगर गड्डी कहीं मतलब एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो जो टोइंग आते हैं ठीक है उनसे बात करिए, ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर करिए, बट सबसे पहले आपको राइट होता है कि आप किसी और यू नो कोलिजन सेंटर से बात कर सकते हो, ये कोई नहीं बताता है. ठीक, तो ये आप पहले कीजिए. सबसे पहले आप स्पीडेक्स वालों को कॉल कीजिए, वो आपके लिए अगर वीडियो कॉल पे आप दिखा सकते हो वीडियो कॉल पे दिखा सकते हैं, या फिर फोटोज भेजनी वो भी कर सकते हैं, और आपको भी ऑनलाइन एक थोड़ा सा एक सॉल्यूशन बता सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर कोलिजन वाला कहता है कि ये गाड़ी आपकी मतलब इट इज नॉट ड्राइवेबल, तो उसके लिए भी वो कुछ आपके लिए सजेस्ट कर सकते हैं. जैसे हम किस कहीं पे भी जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी आप वो कर सकते हो, आपका वो राइट है
0: जी बिल्कुल.
1: तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे जो लिसनर्स है वो आप, मेरी ये गुजारिश है आप ये कीजिए
0: जी,
1: आपकी यू नो जिंदगी इजी हो जाएगी. बिकॉज स्पीडेक्स ऑटो कोलिजन रमन जी हमारे साथ
0: जी.
1: है आई थिंक वो ये एड ऑन कर सकते हैं कि
0: जी.
1: जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनीज है उसके साथ आप खुद ही डील करते
0: जी.
1: इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए
2: जी. जिंदा की माइनर स्क्रैच तो लेके आप मेजर डैमेज जिन्ना भी एक्सीडेंट हो जाता है राइट, उत्थे तक आप रिपेयर करते हैं, सारी तरह दी सर्विसेज देने हैं. तुहाड़ा एक्सीडेंट होया ना तुहानू घबराउण दी लोड़ नहीं गी, तुसी जस्ट एक पहला कॉल करनी है सानू स्पीडएक्स नू, तुहानू उत्थे ही असी सारियां इंश्योरेंसां दे नाल काम करदे हां, ते जिसने कैश काम करवाना कैश भी करवा सकदा है, तुहानू उत्थों ही रेंटल गड्डी हो जानी है तुहाडी, उत्थों ही आपां ने इंश्योरेंस नू कॉल करवा देनी आ, तुसी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लैणी गी. तुहाडा काम जिन्ना टाइम असी कहांगे जो भी होगा उन्ने टाइम दे अंदर ना तुहानू रिपेयर करके दित्ती जाऊगी
0: जी बिल्कुल. सो सारा ने नंबर नोट करना है 416-277-9221, 416-277-9221, एंड 15 साल प्लस का एक्सपीरियंस है गुरप्रीत जी को. सो जो इस कंट्री ते लैंड किते उदो तो लैके अजे तक इन्हें इसे काम दे विच हैगे, इसे चीज दी पढ़ाई कीती आ, ए नहीं है कि एक साल किते काम किता ते अपना काम खोल लिया, इन्हां कोल इसे काम दा ही एक्सपीरियंस ते इसे काम दी ही क्वालिफिकेशन हैगी आ. सो तुसी सोच सकदे हो कि जे किसे कोल इन्ना एक्सपीरियंस है ते तुहाडी गड्डी किन्नी सेफ हैंड्स से आ. सो तुसी सैने कॉल करनी है जे रब ना कराए लोड पैंदी आ. स्पीडेक्स ऑटो कोलिजन सेंटर 416-277-9221, 416-277-9221 ते कॉल करनी है 181 रदरफोर्ड रोड साउथ यूनिट एंड यूनिट 11 हैगा. सो थैंक यू सो मच रमन जी, इन्ना वधिया जे मैसेज लेके आए, गुरप्रीत जी नु मिस कर रहे हैं, बट एक्सपीरियंस ही इन्ना है कि उन्हां दीआं लाइनां ते लाइनां लगियां गड्डियां दी ते ओह कॉल नहीं कर सकदे अज. सो थैंक यू तुसी ज्वाइन कीता ते तुसी

0: जहां हमें जमाना देखे,
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा,
0: यहां हमें जमाना देखे।

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ 1200 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਯੂਨਿਟ 22 ਮਿਸਿਸਾਗਾ 416-804-2015 416-804-2015
1: There are singers There are performers And then there are legends That has defined generations. The one and only Rahat Fateh Ali Khan, live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena. Presented by True Sound Live and Cellular Point. Rahat Fateh Ali Khan and Shah Zaman Ali Khan live in Toronto. For tickets, visit ticketmaster.ca.
2: Hello, AM 530 to tusi sun rahe ho Desh Pradesh Prime Time Radio.
3: Today vich live galbat kar layi hune call karo 905-564-6444.
2: 905-564-6444.
3: Sunde raho Desh Pradesh Prime Time Radio. Chalo AM 530 to.
4: Canada vich rehnde hoye har parivar ko लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
5: इसे लिए मैं अपनी ते वाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो

0: 32 55 80।
1: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि किसी भी चीज की मकदार काफी नहीं है। तलबा से भरी हुई क्लास, शोर, इस सब बहुत ज्यादा भोजल महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में 6.5 बिलियन डॉलर की कटौती की है। हमारे बच्चे बेहतर सलूक के मुस्तैक हैं। हुकूमत से कहें हमारे बच्चों में सरमायाकारी करें, क्लास साइज दुरुस्त करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से एक पैगाम।
2: This is AM 530.

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: वेलकम टू रेडियो गोल्ड. आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड, जहां सिर्फ आपके लिए है सब कुछ, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नया और रोमांचक अनुभव, जहां होगा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, टॉक शो और आपका और हमारा साथ. तो सुनते रहें रेडियो गोल्ड, क्योंकि ये है आपके साथ हमेशा. सुनहरे लम्हे और चमकती दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर लम्हा है सोने की तरह कीमती. गोल्डन मोमेंट्स की मिठास रेडियो गोल्ड के साथ. Views, ideas and opinions expressed in the program are strictly that of the participants and they do not in any ways reflect the views, ideas and opinions of Radio Gold. गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका प्रोग्राम लेके. हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं. हर सैटरडे को ये प्रोग्राम आपकी नजर होता है. 12 सितंबर है आज का दिन, सैटरडे का खूबसूरत सा दिन. क्या खूबसूरत मौसम है, 22 डिग्री टेम्परेचर. इतना हसीन, इतना खूबसूरत मौसम हो तो फिर कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए. हर वेले, हर वक्त शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना करते रहना चाहिए. आपका और हमारा साथ साथ साथ रहेगा. पंजाबी हिंदी का मिक्स, पंजाबी हिंदी उर्दू का ये मिक्स प्रोग्राम होगा. और आपने कोई भी बातचीत करनी है तो हमारे नंबर है 416-233-7368. स्टूडियोज के नंबर है एंड माई नंबर इज 416-910-6000. इस प्रोग्राम में म्यूजिक होगा, गीत संगीत होगा और बहुत सारी नॉलेज आपके लिए लेकर हम हाजिर हुए हैं. रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन होगी, मॉर्गेज की इन्फॉर्मेशन होगी, एस्ट्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होगी कि सितारे आपके क्या कहते हैं. तो हमारे साथ रहे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका और हमारा साथ साथ साथ. कोई भी गीत संगीत सुनना चाहते हैं, फरमाइश करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस इन स्टूडियो और ऑन माई सेल नंबर. और नासिर जी मेरे साथ हैं आज स्टूडियोज में, इनसे बातचीत करेंगे मॉर्गेज के रिगार्डिंग, कुछ इनसे टिप्स भी लेंगे. और बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं हमारी कम्युनिटी के नासिर शाह. नासिर जी आपका तोड़ा स्वागत है निगा.
2: बहुत शुक्रिया सोनम जी. रेडियो प्रोग्राम सुनने नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. जो है तुसी क्या जी, रेडियो गोल्ड, रेडियो गोल्ड वाकई गोल्ड है क्योंकि लोगों ने दिलों च वसिया है. पहले तुसी डिफरेंट चैनल हो, तुसी 530 AM ते काम कर रहे हो और बड़ा अच्छा लग्या तुहाडा जिहड़ा तरीका, तुहाडा 15-16 साल का एक्सपीरियंस है वो तुसी एज ए होस्ट काम किया, वो जिहड़ी चीज़ हैगी वो सानू लोगों नू बहुत चंगी नज़र असी वेखने और बहुत तुहानू असी रिस्पैक्ट करने आ. ओनली बिकॉज तुहाडा जिहड़ा टैलेंट है और तुहाडी जिहड़ी क्वालिटीज़ ने वो सानू बहुत चंगे लगदे हन. ते सोनम जी अज असी बहुत सारिया गल्लां तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारिया चीज़ां ते असी अंडरस्टैंड ते करने आ लेकिन दिल नहीं मनदा. समझ आती है, दिल नहीं मनदा. तो उनके वास्ते बहुत जरूरी है तुसी अपने आप नू पहले मेक श्योर करो कि तुहानू अपनी समझ आ गई है. अगर तुहानू अपनी समझ आ गई तो फिर तुहानू सारिया गल्लां समझ आ जाएंगियां. जदों तक तुहानू अपनी समझ नहीं आएगी तुहानू किसी की समझ नहीं आएगी.
1: नासिर जी ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, इहदे उपर असीं गल्लबात भी करांगे. अपने नाल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है और असी दुनियादारी च इन्ने उलझे हो कि असी सारी दुनिया नू खुश करन च लगे रहने आ बट असी अपने आप नू भूल जाने आ, है ना. और सानू पता ही नहीं है कि असी खुद नाल कनेक्ट होना, अपनी सोल नाल किस तरह कनेक्ट होना. इट्स अ प्रोसैस, इट्स अ प्रोसीजर एंड इट्स अ लोंग प्रोसैस. अज साडे नाल गलबात इस टॉपिक उपर करांगे और शुक्राना बड़ा जरूरी है जिंदगी दे विच.
2: हां जी, है ना? देखो गुरु नानक साहब ने 20 रुपया नाल अपना लंगर चलाया सी.
1: बिल्कुल,
2: हुण पूरे वर्ल्ड च लंगर चलदा पिया. साडा भी यही बिलीव है, असी बहुत सारे लोग ऐसे बिलीव नाल काम कर रहे हैं. तुसी अगर हो सके तो दवो, देन नाल तुहानू सुकून मिलेगा और उनके नाल तो जिहड़ा ओ सुकून होएगा ना वो तुहानू अंदाजा ही नहीं हैगा. और मेरा बिलीव 100% हैगा जे तुसी एक बार करके वेखो, अगर तुहानू नहीं यकीन आता, एक रुपया या एक डालर किसी नू दे के वेखो, रब दे नां दा मैं कहना होना, ਤੇ 70 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
3: ਆਉਂਦਾ 100%।
2: ਔਰ 70 ਗੁਣਾ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ ਔਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਸ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ
3: ਨੇ।
2: ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਵਾਂਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਕਚੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
3: ਜਾਏਗੀ। जी, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थॉट। आज का पॉजिटिव थॉट भी यही है, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। सानू बहुत सारे एक्चुअली इट्स इन बिल्ट इन अस नैगेटिविटी एंड कंप्लेंट्स करनी है। कोई भी चीज़ साढ़े को 10 चीज़ा ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਟ 2 ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨੋਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਟ ਯੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਟੂ ਦੀਸ 2 ਥਿੰਗਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟ ਫੋਕਸ ਔਨ 8 ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਐਂਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਐਂਡ ਓਵਰਕਮ ਵਿਚ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਂਡ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਯੈਟ ਟੂ ਕਮ। ਸਬਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੋ ਜੀਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹਮ ਅੱਜ ਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੌਂਗ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇ। 416-233-7368 ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਇੰਜੋਏ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੌਂਗ। ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ, ਰੇਡੀਓ ਗੋਲਡ 5 to 6 AM 5:30।
1: The views, ideas and opinions expressed in the program are strictly that of the participants and they do not in any

0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
1: ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा. खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें. तीखे और तेज मसाले हर फीके पन को मिटा दें. लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर. 416-526-6800 416-526-6800.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रिट्स फर्नीचर दा ये मैसेज जरा

0: सोनम। हाय अंजू, कैसी हो? How's your son doing?
1: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
0: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
2: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
3: लीडर गोल्ड में आपका स्वागत है और चले आपको लेकर चलते हैं क्लियर ऑप्टिकल, और वरुण जी हमारे साथ हैं। वरुण जी वेलकम, कैसे हैं आप?
4: बहुत बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच सोनम जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे प्रोग्राम पे लेने का।
3: यू वेलकम जी। और चले क्लियर ऑप्टिकल के बारे में बहुत बार हम सुनते रहते हैं, लेकिन जो हमारे नए लिसनर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें, क्लियर ऑप्टिकल क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड व्हाट इज द लोकेशन?
4: हाँ जी सोनम जी, क्लियर ऑप्टिकल है ये ब्रैम्पटन में स्टील्स एंड फाइनेंशियल के एरिया में। हमारी एक दूसरी लोकेशन भी है जॉर्ज टाउन में, एंड हमारा जो मेन बिजनेस है आपको दुनिया के तमाम अच्छे से अच्छे फ्रेम्स देना आई ग्लासेस के, सो ब्रांड नेम फ्रेम्स, आई एग्जामिनेशन भी करते हैं हम, एंड आपकी कोई ग्लासेस की रिपेयर करनी है या आपने अपने फ्रेम में ही लेंसेज डलवाने हैं, हमारे पास पूरा ए टू जेड सिस्टम है
3: जी। क्लियर ऑप्टिकल फाइनेंशियल एंड स्टील्स के कॉर्नर पे बहुत ही खूबसूरत स्टोर है, आप भी वहाँ पे जाकर जरूर आएं और एक चक्कर जरूर लगाएं एंड यू विल सी द डिफरेंस विद क्लियर ऑप्टिकल। वरुण जी जाने से पहले अपना नंबर दे दें एक बार फिर से।
4: सोनम जी हमारा नंबर है 905-457-3232, एंड सोनम जी एक बहुत ही जरूरी बात है मैंने आप हमारे लिसनर्स को बतानी है कि हमारे पास स्मार्ट क्लासेस की पूरी रेंज है, जो स्मार्ट क्लासेस जिनमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, कैमरास हैं, माइक्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन AI। आजकल AI के जमाने में आप अपनी ग्लासेस में भी इस चीज को इंजॉय कर सकते हो।
3: वंडरफुल, क्लियर ऑप्टिकल स्टील्स एंड फाइनेंशियल, थैंक यू वरुण जी, शुक्रिया।

0: 34 प्रोफेशनल इंस्टॉलर के साथ विंडो एंडोर इंस्टॉल कर दी है। अब हमने अक्रॉस ऑन्टारियो में धीरे धीरे करके लोकेशन खोल रहे हैं। फर्स्ट लोकेशन ब्राम्पटन गोर रोड प्लाजा में सब्जी मंडी के सामने, उसी प्लाजा में सब्जी मंडी के सामने हमारा यश विंडोज का डोर का फैक्ट्री आउटलेट खोल चुका है। आपको विंडो डोर की क्या क्वालिटी होती है और प्राइसिंग सबसे कम प्राइस में क्या वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलती है वो जाके आप देख सकते हो। प्रमोशन भी चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। और अगले हफ्ते यानी 19 तारीख को बैरी लोकेशन भी खुल रहा है
1: जी। और बिल्कुल 4167323600 नंबर है यश विंडोज एंड डोर्स, टू लोकेशन, नो मीडिएटर, मैन्युफैक्चरिंग खुद कर दे हैं। और कितना टाइम हो गया धर्म जी इस बिजनेस?
0: 14 साल हो गए और हमने टोटल 19,000 जॉब अब तक पूरी कर चुके हैं।
1: क्या बात है, जबरदस्त। 4167323600 आपने घर रेनोवेट करना है, उसको नया बनाना है, विंडोज डोर चेंज करने हैं, ब्लाइंड चेंज करने हैं, तो 4167323600 इज द नंबर टू कॉल। थैंक यू यशी, धर्म जी बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।

0: लाइफ इज अ स्ट्रगल, लाइफ इज अ चैलेंज. कल यहाँ पे क्या हो किसी को कुछ नहीं पता. सो अज दे विच जिंदगी जीना ही जिंदगी है. जो थोड़ी जिंदगी अज हो रहा है दैट इज लाइफ. कल की होना है किसी नु कुछ नहीं पता. चलो थोड़ी जी थोड़ा सा हम चांद सितारों की तरफ चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है. और कुछ लोग इसे सुपरस्टिशन कहते हैं और कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं.
1: चांदनी बियॉन्ड स्टार्स, यहाँ हम करेंगे सितारों की भाषा को समझने की कोशिश, क्योंकि आसमान में चमकते सितारे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं. ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के संकेत, ज्योतिष साइंस के गहरे रहस्य और उनके हमारे जीवन, करियर, सोच, रिश्तों, फैसलों और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव. तो आइए ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं, क्योंकि कभी कभी जवाब जमीन पर नहीं सितारों में छुपे होते हैं और हर सितारा एक कहानी कहता है और शायद उनमें से एक कहानी आपकी भी हो. तो चले सितारों से जुड़िए और खुद को समझिए.
0: बिल्कुल जी, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी क्या है. एस्ट्रोलॉजी को मैं हमेशा जीपीएस कहती हूँ, क्योंकि जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं ना, तो आगे हमें जीपीएस बता देता है कि आगे सड़क रोड खराब है या पुलिस खड़ी है या कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप अपनी गाड़ी को टर्न कर लो. एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही है. एस्ट्रोलॉजी में हम अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी जिंदगी की प्रेडिक्शन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ताकि आने वाली प्रॉब्लम से हम जूझ सकें. अगर हमें पता लग जाए कि हमारा ये वक्त बहुत खराब है या आने वाला

0: 6:01 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰੇਡੀਓ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ AM 530 ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ 3631 ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਵਨ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ?
0: ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ?
1: ਮੈਂ ਬੋਹਲੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਲੋਕ ਚੋਂ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ?
1: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਨ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ।
1: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜਮੁਖ ਪੱਤੇ ਹੋ ਲਈਏ ਗੁਆਂਢ ਪੱਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨੀ ਸਮਝਦਾ
0: ਜੀ,
1: ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਕੁਛ ਨੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨੀ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ।
0: ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਵਾਇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਔਖਾ ਵੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਘਰੇ। ਸੋ ਹਿੰਟ ਦੱਸਤਾ, ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਸਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ PR ਹੈਗੇ ਹੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਅਸਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਲੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੋਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, 4 4 ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭੀ ਨੂੰ
0: ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੈਸਟ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਆ, ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਲੋਨ ਦੀ?
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਮਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਨਕ, ਆਫਿਸ ਹਮਾਰਾ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮੇਂ ਹੈ, 218 ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੁਲੇਵਰਡ ਪੇ। 8 ਸਾਲ ਸੇ ਹਮ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ, एक तरफ आप स्किल डेवलप करते हैं, आसान से कोर्स करते हैं, ऑनलाइन है आसान है।
0: ओके,
2: कोई एज लिमिट नहीं है इसके अंदर। आप अपने घर के कंफर्ट से फोन पे लैपटॉप पे क्लास लगाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है बिजनेस का, अकाउंटिंग का। ऑन अदर हैंड आपको आपके खाते में गवर्नमेंट से 50,000 से 1,70,000 डॉलर तक की फंडिंग आती है 0% पे, और लाइक कोई गारंटी नहीं है इस लोन पर। इस पैसे को आप कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते हैं, इससे बढ़िया लोन एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि ये 0% पे है। बाकी सारे लोन एटलीस्ट 5-10% पे तो होते ही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, इतना सस्ता लोन मैं कभी नहीं सुनिया। तो आज कितने बंदे की फंडिंग आई है जी जिन्होंने तुसी असिस्ट कर रहे हो?
2: बिल्कुल जी, कल फ्राइडे था, कल अप्रोक्सीमेटली 14 बंदों को फंडिंग आई है उनके खाते में जिन्होंने जुलाई में बैच ज्वाइन करा था, और मतलब 1-2 महीने में फंडिंग गवर्नमेंट उनके खाते में डायरेक्ट डाल देती है। बच्चे ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट उस हिसाब से फंडिंग ज्यादा डालती है। तो फैमिलीज अगर आप हैं, आपके अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, आप फैमिली हैं 4 या 5, आपको 1.5-2 लाख तक भी आता है। बिल्कुल जी, अगर 2.5 साल का कोर्स है तो 0% है वो वाला पैसा, और 2.5 साल के बाद जो पहली किस्त स्टार्ट होती है तब ब्याज क्या है पूरे साल का 2.5%।
0: अच्छा,
2: मतलब $200 महीने का ब्याज $1,00,000 पे एग्जांपल के लिए। ऐसा लोन कहाँ मिलता है बताइए? 15 साल तक उससे आसान से किस्तों में पे करते हैं। पैसे ना हो लोन डेफर हो जाता है। ऐसे नहीं कि गाड़ी के लोन पे गाड़ी उठा लेंगे बैंक वाले, घर के लोन पे घर उठा लेंगे। यहाँ पे किताबें थोड़ी उठाएगी गवर्नमेंट आपकी। इस लोन को हासिल करें, इन्वेस्ट करें, खर्चे चलाएं, रिफाइनेंसिंग या फिर क्रेडिट कार्ड के चक्रों से बाहर निकले
0: जी। सो जो जिदा आप गल की आ नागपाल जी कि जो लोन की असं गल सुनते हैं क्योंकि वैसे ही अच्छा लोगों के खर्चे वधे हुए हैं, तो जो लोन की गल सुन के हम जिदा तुम दसिया तो हम समझ आता है कि 0% इंट्रस्ट तुम 2.5 साल तक कुछ पे नहीं करना, कोई इंट्रस्ट नहीं पे करना। तो इस करके जो इस लोन की गल करते हैं तो बेस्ट लोन तुम काउंट कर सकते हो क्योंकि अगे जाके भी यदा इंट्रस्ट बड़ा बहुत मिनीम इंट्रस्ट हैगा 2.5 साल तो बाद भी जो तुम पे करना। तो जी तुम दसिया भी एज लिमिट ए कोई नहीं हैगी, किन्ने भी साल का कोई भी बंदा कोई कोर्स लै सकता?
2: बिल्कुल जी, कैनेडा में चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम है, कोई एज पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बैंक की है, मेरी पॉलिसी नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी उम्र लाइक अब मान के चले पेंशन पे है 75 ईयर्स भी है, और ऐसे क्लाइंट्स भी जिनकी उम्र 40-50 ईयर्स है। अप्रोक्सीमेट एज जो है वो 50 साल है हमारे क्लाइंट्स की।
0: ओके ठीक है जी। तो जिन्ने लोग जिन्होंने ये प्रोसेस थोड़े थ्रू किया जी, तो जो वो सैकेंड कोर्स भी ले रहे हैं तो फिर वो थोड़े को क्यों आ रहे हैं जी? तो ये बारे थोड़ा सा जरूर दसो जी प्लीज।
2: हमारी फीस बड़ी ट्रांसपेरेंट है, काम होने के बाद में लेते हैं कितनी, $199। एक तरफ आपके पास 1,70,000 का 0% पे लोन आ रहा है, दूसरी तरह आपकी जेब से जा के रहा है काम होने के बाद $199। कोई परसेंटेज कमीशन नहीं है। लोग ये भी बोलते हैं भाई साहब परसेंटेज कमीशन क्यों नहीं है? भाई साहब मैंने आगे किसी को देनी नहीं, मैंने आपसे लेनी नहीं। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 2 नंबर का काम तो है नहीं। तो आप रिश्वत खिलाएंगे कैश देके मोर्टगेज वालों को
0: जी।
2: तो इसलिए साफ काम है, 8 साल से हजारों को असिस्ट कर चुके हैं। अभी भी जो हमें सुन रहे हैं ना उसमें से 20% हमारे क्लाइंट ही है। कोई कुंडी, कोई चाबी, कोई मीठी बातें नहीं है। कॉल अभी करें, असेसमेंट कराएं, 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड ऑफिस पे आएं, एनरोल कराएं। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है 16 सितंबर को, उसके बाद अगला बैच 1.5-2 महीने बाद होगा। तब तक तो फंडिंग आपके खाते में आ भी जाएगी अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे
0: जी। तो एक बार नंबर फिर तो दसिए जी, 4372643175। इस नंबर पर कॉल करके इस लोन के बारे कोर्सेस के बारे तुसी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। 437-264-3175 4372643175। जो काम थोड़ा हो गया, पहली चीज़ तो यह है, मैंने बहुत चंगा लग्या कि तुसी पढ़ रहे हो, तुसी कुछ सीख रहे हो, तो उहदे लई तुहाडी सरकार हैल्प कर रही है। सो तुसी पढ़ना चाहते सी, वेट कर रहे सी कोई कोर्स पढ़ना, कोई कोर्स करना, तो हुण तुहानू फंडिंग भी मिल सकती है, लोन मिल सकता है जिहड़ा कि बहुत अफोर्डेबल है। 437-264-3175 नंबर पर कॉल कर लियो जी, इन्हां दे ऑफिस दे नाल गलबात करके तुसी अपॉइंटमेंट सैट कर लियो, तो बाकी सारिया डिटेल्स तुसी इन्हां तों पुछ लैणियां। इन्हां दी फीस $199 थोड़े तो जो थानू फंडिंग मिल गई, लोन मिल गया उस तो बाद। नागपाल जी कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे तुसी?
2: जी कोर्सेज आसान है, एग्जाम्स नहीं है, असाइनमेंट्स हैं बड़े हमारे, लाइक मान के चले हाउसवाइफ हैं जो कर रहे हैं, उबर ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड लोग, डजंट मैटर एट ऑल। पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन, स्किल डेवलप करें। ऑन अदर हैंड 50,000 से 1,70,000 लोन हासिल करें, कहीं भी पैसे को खर्च करें। हमारी फीस ट्रांसपेरेंट है, काम होने के बाद है, कोई मीठी बातें को चलाकी नहीं है इसके अंदर। हम लोग अगर आप कहीं भी जाएंगे, लोन आज के टाइम पे लोग पहले दुखी हैं
0: जी,
2: जिनसे वो लोन लेने जाते हैं वो उनको और छीनने के लिए बैठे हैं, बट हमारा साफ काम है गारंटी पे ठा करके एयर पे फीस बताते हैं, कोई चलाकी नहीं है। और हजारों को सर्च कर चुके, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं, कोई कागज नहीं मिलता, गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा, जो पागल बना देंगे कागज एडिट करके। नंबर 437-264-3175 437-264-3175 होने कॉल करो, एस्टिमेट लो 4372643175 437-264-3175
0: जी। जान तो पहला एक सवाल हो रहा है नागपाल जी कि जेडे सारे लिसनर थानू कॉल करेंगे वो की एक्सपेक्ट करन, केड़ा पेपर वर्क उन्होंने चाहिए होगा थोड़े ऑफिस आने के लिए?
2: बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी ये। ओके, इसमें आपका NOA नोटिस ऑफ असेसमेंट 2025 का लगता है, हस्बैंड वाइफ दोनों का, नंबर 1। नंबर 2 मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, नंबर 3 बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लगते हैं।
0: ओके,
2: कोई एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट ही नहीं लगता, क्या रेफरी करेंगे आप? इसलिए साफ काम है, साफ फीस है, कोई परसेंटेज कमीशन दो नंबर नहीं है। कॉल करें, प्रॉपर ऑफिस है, 6 बंदे काम कर रहे हैं आपके लिए, नहीं कि हम कोट पैंट पहन के आपको टिम हॉर्टन में बुलाएंगे मिलने के लिए। हमारे पास क्लाइंट आते बताते सर पहले एजेंट ने हमें कोट पैंट पहन के टिम हॉर्टन में बुलाया। हमारा साफ ऑफिस है, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज लेनी होती है, गलत काम करना होता है, हम साफ काम करते हैं, कोई चलाकी नहीं है। 437-264-3175 0% पे लोन हासिल करें, 1.5 से 2 लाख का, 437-264-3175 437-264-3175
0: बहुत शुक्रिया नागपाल जी। सो तुहानूं उही पेपर वर्क चाहिदा जी जिहड़ी ऑलरेडी इनफॉर्मेशन तुहाडी CRA दे कोल हैगी आ, नोटिस ऑफ असैसमेंट भी उन्हां दे कोल हैगा, तुहाडे बच्चियां दे बर्थ डेट एवरीथिंग उन्हां दे कोल ऑलरेडी हैगा। सो उहदे विच कोई जिद्दां इन्हां ने दस्सिया कोई हेरा फेरी नहीं, कोई यह नहीं भी आह पेपर बना लिया ओह कर लिया। सो यह बड़ा चंगी चीज़ लगती है। बाकी तुसीं जाके गल करो, कोई सवाल है 437-264-3175 नंबर ते कॉल करके गलबात कर सकते हो। थैंक यू सो मच नागपाल जी, नेक्स्ट सैटरडे फिर गलबात होएगी जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 437-264-3175 ते तुसीं लोन लेना जी, कोर्स करना है 50,000 तो लैके 1,70,000 तक का लोन, थानूं 0% इंटरस्ट ते मिल सकदा, तुसीं पढ़ भी सकते हो ते नाल दी नाल थानूं पैसों का मसला यानी कि पढ़ाई करनी है, कॉलेज नू फीस तो भरनी पैनी है ना, तो उहदे विच सरकार थोड़ी मदद कर सकती है। 0% इंटरस्ट 50,000 तो 1,70,000 तक का लोन 437-264-3175 ते कॉल कर सकते हो। इंसान हर एक मुसीबत दे विचों लंघ सकता है, पर घर दे नाल रिलेटड अपने घर दे विच आम ही चीज़ां तुसीं पहले या तो फेस कर चुके होंगे या कदे ना कदे जिंदगी च जरूर इदां दी चीज़ फेस कीती होगी भी कि चीज़ तो तुसीं कि चीज़ दे विचों नहीं लंघ सकते। इंसान हर एक दुख तकलीफ जिंदगी च सहार लैंदा, उहदे विचों लंघ जांदा, पर एक चीज़ जिहड़ी घर दे विच हुंदी उहदे विचों तुसीं नहीं लंघ सकते। बहुत सौखा है, थोड़ा जिहा सोचोगे याद आ जाएगा। 416-233-7368 416-233-7368